0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालू से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल NS सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं,

बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें। और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया, हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800-4405-59 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF, और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल

0: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
1: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
1: कमली और सोमारू चले घास लेने।
0: घास थोड़ी सी घास ले ले,
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
6: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की

0: और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते, वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी,

0: विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ द वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
2: फर्स्ट बॉल 20। नमस्कार, फर्स्ट बॉल 20 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। चलते हैं सीधा टॉस के लिए।
3: हरमन, यू हैव गॉट द कॉइन, सेंड इट फ्लाइंग।
4: हेड हेड इज द कॉल।
3: हेड्स इज द कॉल। हेड्स इट इज। Nigar Sultana Jyoti, congratulations on winning your first toss of the tournament. What's your decision and why?
5: We wanted to bowl first, seeing the condition, and we really wanted to give our bowlers that freebie that they could bowl.
3: In terms of the India versus Bangladesh rivalry, are you looking to channel the memories of 2018, such a glorious chapter that is?
5: I think it's just a new day. We're just looking forward to play our good cricket here because it's been a long time. After a year, we're definitely getting some good memories from there. But it's an important day for all of us because it's our last game in this tournament. It could be not the last our game because if we could do well here, maybe we might get another chance. So we just wanted to play as a whole unit and wanted to execute ourselves in the middle.
3: Any changes to your starting 11?
5: No, we are playing the same 11.
3: What sort of a total are you looking to restrict the opposition to?
5: See, we have been playing here, so we look to, we wanted to restrict them in a total that we really wanted to chase.
3: Thank you very much. Go well.
5: Thank you so much.
3: In comes Harmanpreet Kaur. Harman, had you won the toss, what would you have done?
6: Well, to be honest, we thought of batting first only because we thought having runs on the board will give us a lot of confidence, and good we got batting first.
3: The overall head-to-head between India and Bangladesh is firmly in favor of India in T20 eyes, but they did push you to the brink in the past. What do you make of this matchup?
6: Yeah, definitely. I think T20 format is like that. You can't take any team lightly, and result is always a history, and today is a fresh game, and we have to go with a positive approach.
3: Any changes to your playing combination?
6: No, we're going with the same 11.
3: In terms of putting on a total now on this surface, what's a good total you'd be aiming for?
6: Well, I've been telling that you know, this pitch is a little tricky. You can't really set something in your mind. But I think let's see how our batting power play goes, and accordingly we'll see how much, you know, we can put on the board.
3: Go well.
6: Thank you.
3: Well, the news from the center is Bangladesh have won the toss and decided to bowl first.
2: रेत की गर्द में छिपे हैं कई इतिहास, लेकिन आज दुबई के इस खूबसूरत मैदान पर एक नई दास्तान लिखी जानी है। भारत बनाम बांग्लादेश पहला सेमीफाइनल। एक तरफ है भारत की वो आक्रामकता जिसने एशिया पर राज किया, तो दूसरी तरफ है बांग्लादेश का वो निडर हुनर जो बड़ी से बड़ी चुनौती को धूल चटाने का दम रखता है। ये सिर्फ सेमीफाइनल नहीं है, यह है स्पिन बनाम स्पिन, धैर्य बनाम आक्रामकता और हर गेंद पर बदलती कहानी। आज एक टीम फाइनल का टिकट कटाएगी और दूसरी टीम के सपनों पर लगेगा विराम। शुरुआत हो चुकी है आपके पसंदीदा रेडियो प्री मैच शो फर्स्ट बॉल 20 की। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ हैं मेरी को एंकर साक्षी मानवाल और दो विशेष मेहमान बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन।
7: Thank you so much, Anand. Now, to quickly take the discussion forward, Mona, I'll start with you. The tournament so far has been very spinner friendly. A total of 123 wickets been taken at an economy of 4.81 by spinners. India lost the toss today. Do you think it was a good toss to lose or a good toss, or we can change the favours?
8: देखो, अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, हरमनप्रीत ने खुद टॉस के समय बोला कि अगर वो भी टॉस जीतती तो शायद बैटिंग ही चुनती, क्योंकि 12 मैच हुए हैं और 8 बार जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो जीती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि टारगेट

0: वो ना आपके पास आती हूँ, उससे पहले मुझे बताया जाए, हमारे साथ इस वक्त एक श्रोता जुड़ गया है, उनसे भी बात कर लेते। नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
1: मैं राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, गिर जा रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते
1: मैम।
0: हैं आप?
1: पहले तो सब आप टीम को और हमारी बहन को शुभकामना, हार्दिक स्वागत करता हूँ।
0: थैंक यू सो मच, थैंक
1: यू।
0: मैं
1: ये बोल रहा हूँ, जो ये मेरा दो प्रश्न है, एक तो मतलब जो ये परिमा रावत जो बोल रहे हैं, इसकी जगह पे राधा यादव होती, और एक जो इस पर की मंदाना पहले आती परिमा, ये क्या नाम, पतिका रावल, इसकी जगह जो जमीका रोड्रिक होती तो ये अच्छी बल्लेबाजी भी होती।
0: जी, जेमी रॉड्रिक्स के बारे में बता दें कि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी के वजह से वो मैच का हिस्सा नहीं बन पाई है काफ़ी समय से। लेकिन दूसरा, इन्होंने यहाँ पर हमारे बॉलर के ऊपर बात करी है मुना, और इनका ये कहना था कि जिस तरीके से प्रेमा रावत है, उनकी जगह अगर राधा यादव होती तो शायद ज़्यादा बेहतर बॉलर का एक हमें कह लीजिए सब्स्टिट्यूट या फिर ऑप्शन मिल जाता। प्रेमा रावत ने 4 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट निकाला एट एन इकोनॉमी ऑफ 5.2 एंड दैट इन इटसेल्फ, जिसमें उनकी बांग्लादेश की कप्तान यानी निगार सुल्ताना जी, वो उनका सबसे इम्पोर्टेंट विकेट रहा है।
2: आप मुझे बताओ, T20 क्रिकेट में 6 से नीचे की इकोनॉमी से अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है और इम्पोर्टेंट विकेट भी ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में आप उसके टीम में रहने पर सवाल उठा सकते हो। जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, और सिर्फ इस मैच में नहीं, प्रेमा ने थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है टीम के लिए, और अभी तक भारत का अपराजय रहा है अभियान जो है, एक भी मैच हम हारे नहीं है, तो एक अच्छा खासा विनिंग कॉम्बिनेशन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी खिलाड़ी की भूमिका पर आप उंगली उठा सकते हैं।
3: प्रेमा रावत ने इस टूर्नामेंट में इस मुकाबले से पहले 5 विकेट लिए थे, तो अच्छी फॉर्म में हैं और आज भी उन्होंने एक सफलता हासिल की है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में। नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: अरे हूँ मैं वही वेंकट रेड्डी, गांव लकवरम, जिला सूर्यपेट, तेलंगाना से।
3: जी रेड्डी साहब स्वागत है, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप?
4: हमारा टीम फाइनल में आ गई के लिए मुबारकबाद, और फाइनल में हम एक चेंज के साथ आना चाहिए कि प्रतीका रावल सॉरी भारती फूलमाले की बैट पर लगने से बॉल इंटर कर रहे हैं, इसीलिए इनको चेंज करना चाहिए। अब फाइनल में भारत हमेशा की तरह अच्छी खेल पेश करना चाहिए, श्रीलंका के साथ अच्छा मैच खेल के आशिया कप को लाना चाहिए, ये तो मेरा मानना है। अब क्या कहते हैं?
3: भारती फूलमाली को लेकर इनका सवाल है, लेकिन बहुत ज्यादा गेंदे इस टूर्नामेंट में उनको खेलने को नहीं मिली है रविंद्र, बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हैं श्रोता भारती को लेकर।
5: बिल्कुल, देखिए उनको पूरा मौका नहीं मिल पाया भारती को भी, लेकिन अब पूरी तरह आप देख नहीं पाए, अच्छी बैटर है, लेकिन आप ये देखिए जो बाहर के जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें कोई बैटर नहीं है, आप खिलाएंगे किसको? आप सारे बॉलर्स हैं और एक विकेट कीपर है, तो कोई बैटर नहीं आपके पास, तो मुझे लगता है कि अब आपको इन्हीं से जाना पड़ेगा और इन्हीं पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और उम्मीद करिए कि ये अच्छी बैटिंग करके दिखाएंगे।
0: राइट, ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द फाइनल्स अब तो, और भारत के चांसेस मोना आपके पास भी आऊँगी, रवि आपसे पूछूंगी, आप दोनों किस प्रकार से देखते हैं फाइनल के अंदर? अभी मैं पता होना चलना है कि कल के मुकाबले में जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में होने वाला है, जो भी उस मुकाबले को जीतेगा भारतीय टीम का अपोनेंट बनेगा फाइनल्स के मुकाबले में, और भारत के चांसेस आपको किस तरीके के दिखते हैं?
2: देखिए अभी तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि कौन खेल रहा है भारत के खिलाफ। वैसे ज़्यादा चांसेस है कि श्रीलंका से ही फाइनल होगा, श्रीलंका पहले भी खिताब जीत चुका है 2 बार, और इस टूर्नामेंट में अगर श्रीलंका की बात करें तो बांग्लादेश ने ही उसे बहुत कड़ी टक्कर दी थी, तो मुकाबला भारत के खिलाफ खेलना, वैसे भी 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम है, एक प्रेशर होगा, और इतनी कन्विंसिंगली जीत कर जा रही है फाइनल में टीम, तो अब देखना होगा कि कल श्रीलंका का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसके आधार पर ही कोई कयास, और उससे पहले भारत को अपनी जो कमज़ोर कड़ियां हैं उनको दुरुस्त करना होगा।
3: जी हाँ, कमजोर कड़ियों की जब चर्चा हो रही है तो पहली कमजोर कड़ी जो भारत का है वो मध्यक्रम, आज भी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं हो पाया, चाहे हरमन का बल्ला हो, चाहे प्रतिका रावल हो, ऋचा घोष भी उस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर पा रही हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि भारती की चर्चा हुई, बहुत कम गेंद उनको खेलने को मिली, साथ ही साथ दीप्ति शर्मा ने आज ज़रूर बेहतर प्रदर्शन किया। और दूसरी कमज़ोर कड़ी जो इस टीम इंडिया की है वो है

0: फील्डिंग। क्रूशियल मौकों पर अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप उस मोमेंटम को लूज करेंगे। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर
0: जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं?
1: सर मैं प्रकाश बोल रहा हूं अमरावती से।
0: जी प्रकाश जी,
1: बहुत 50 बार ट्राई करने के बाद अभी चल के मेरा कॉल लगा है।
0: जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप?
1: आपको इंडियन टीम जीतने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वहां पे ना मेरे फेवरेट रवि सर है वहां पे एक पर, तो मेरा उनसे ये सवाल है। रवि सर नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सर हमारे विमेन्स टीम में जो इंडिया विमेन्स टीम है, आप वो बेहतर जवाब दे पाएंगे कि सर हमारे मिडल ऑर्डर में ना फायर पावर की जो कमी है, या फिर देखो मेंस टीम में जैसे कोहली है स्ट्राइक रोटेट बार बार होती है, तो विमेन्स टीम में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि फायर पावर आए या फिर डोमेस्टिक प्लेयर को चांसेस दिए जाए?
2: देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैटिंग में मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं वीकनेस लग रही है, जो जेमिमा के ना होने से भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है बीच में टीम में। भारतीय अभी पूरी तरह बैटिंग अब उनको पूरी तरह मिली नहीं है, और हरमनप्रीत अभी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। जब तीन चार बैटर आपके सामने ऐसे केसेज आ जाएँ तो मिड ऑर्डर हमेशा थोड़ा सा चरमरा सा जाता है। स्मृति उसकी कमी को पूरा कर रही हैं, शेफाली पूरा कर रही हैं, और प्रतिका रावल से हमें उम्मीद है कि इस समय प्रतिका रावल का चलना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि फाइनल में थोड़ा ठीक, जो भी आज कमियाँ रहेंगी उनको मैनेजमेंट ठीक करेंगी और ये बैटिंग आपको थोड़ा बेटर होगा अगले मैच में, बेटर दिखेगी फाइनल्स में।
3: राइट, सो अगले मैच में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि यानी अगला मैच तो अब क्या कहें, सिर्फ फाइनल्स ही हैं एंड द बिग डे जो कि रविवार को होगा जब भारतीय टीम सामने आमने होगी इधर श्रीलंका या फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो उसमें हमें ये उम्मीद रखनी पड़ेगी कि प्रतिका रावल जिन्होंने आज एक बार फिर से एक मेडियोकर पारी खेली, हम कह सकते हैं पारी को संभालने वाले किरदार को निभाने आई थी नंबर तीन पर, लेकिन खेल की गई जिसमें 24 में 20 रन उन्होंने बनाए 24 गेंदों में। बट उससे ज़्यादा बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न जो मुझे लगा वो थी हरमनप्रीत कौर मोना, जिन्होंने काफ़ी बॉले 16 गेंदें इनिशियली वेस्ट करी और फिर मोमेंटम पिकअप किया। अगर श्रीलंका संडे को हमारे सामने आती है तो ये पॉइंटर्स या ये जो एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं बहुत बुरी तरह से भारतीय टीम के एक्सप्लॉइट हो सकते हैं अगर हमें अच्छी ओपनिंग नहीं मिली, और उस दिन सामने बांग्लादेश नहीं होगी।
4: मैं मैच के बीच में देख रही थी कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि आज टॉकिंग पॉइंट क्या होगा, हरमनप्रीत कौर का स्ट्राइक रेट या ड्रॉप्ड कैचेस। तो मुझे लगता है कि ड्रॉप्ड कैचेस पे तो काफ़ी बात हो गई है, लेकिन हरमनप्रीत का स्ट्राइक रेट लगातार, वर्ल्ड कप में भी काफ़ी इस पर बात हुई थी लेकिन बाद में एक पारी उन्होंने अच्छी खेली थी। तो जब आपके पास स्मृति मंधाना या शेफाली वर्मा अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो सबसे अनुभवी और अच्छी बल्लेबाज हैं हरमनप्रीत। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले बड़ी पारियां ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, तो लोगों को उसी हरमनप्रीत कौर का इंतज़ार है जो कप्तानी पारी खेले, मोर्चे से अगुवाई करे। वो कहीं इंटेंट अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो फाइनल मैच है, उम्मीद यही करेंगे कि कप्तान एक उस पुरानी हरमनप्रीत कौर की झलक देखना चाहेंगे जो मैच जिताती थी अपने बल्ले से।
0: रविंद्र जी, जब टीम जीत रही होती है तो कोई भी कप्तान या टीम मैनेजमेंट जिसमें कोच भी शामिल होता है वो टीम की संरचना में बदलाव नहीं करना चाहता। यहाँ पर जैसे कि हम वीक लिंक की बात कर रहे हैं तो वीक लिंक में हम देख रहे हैं कि मध्यक्रम है जहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, क्रांति गौड़ को विकेट नहीं मिले हैं क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हैं, ज़्यादातर स्पिनर से गेंदबाजी कराई जा रही है। क्या देखते हैं यहाँ पर, रेणुका ठाकुर भी हैं इस 15 सदस्यीय टीम में बड़े मैच में, क्योंकि हमने देखा कि मारूफा अख्तर को जिस तरीके से स्विंग मिल रही है रेणुका उसमें महारत हासिल कर चुकी हैं, क्या उनको चांस देने के बारे में सोचा जा सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही पे है कि क्रांति गौड़ के बदले आप रेणुका को चांस दे सकते हैं क्योंकि रेणुका का बॉल स्विंग भी ज़्यादा होता है और क्रांति उतना अच्छा बॉल नहीं कर पा रही जिस हिसाब से है। ये भी डिपेंड करता है कि विकेट टर्निंग ट्रैक्स है तो मीडियम पेसर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्रांति से अगर वो रेणुका नेट्स पर अच्छा बॉल कर रही है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि अगर उनको उनका टच अच्छा है तो खिलाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
3: अब क्विकली थोड़ी सी एक बार कल के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं, श्रीलंका अप अगेंस्ट पाकिस्तान। श्रीलंका का मिन अनडिफीटेड अनबीटन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, अपने ग्रुप बी के तीनों मुकाबले ये टीम जीत कर आ रही है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाला है। पाकिस्तान समहाउ हैज पिक्ड अप द मोमेंटम एट द राइट टाइम बिकॉज जस्ट कहते हैं ना पीकिंग एट द राइट टाइम, जो कि एक चीज़ वो एक टर्म होती है, पाकिस्तान उस तरह की स्थिति में है।

0: कल का मुकाबला आप किस तरह से आंकती है मोना?
1: मुझे लगता है श्रीलंका का पलड़ा ही भारी रहेगा। एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है, पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा है, कई मैच विनर है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन पाकिस्तान कर रहा है, मोरल बहुत डाउन हुआ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रुप फेज में एक भारत ही था जिसके खिलाफ हार्ड टेस्ट था उसके लिए, और उसमें वो बिल्कुल ही 19 साबित हुआ। तो काफ़ी कठिन चुनौती है पाकिस्तान के लिए कि रीग्रुप करके श्रीलंका जैसी टीम के सामने अच्छा परफॉर्म करना। तो मुझे लगता है इस मैच में श्रीलंका का पलड़ा ही भारी होने वाला है।
2: रविंद्र, कल दो ऐसे बॉलर्स के बीच भी फाइट देखने को मिलेगी। एक तरफ चमारी अट्टापट्टू जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 विकेट लिए, पाकिस्तान के लिए नासरा ने 6 विकेट चटकाए, तो वो बैटल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
3: बिल्कुल होगा, नो डाउट कि लेकिन जो इस समय श्रीलंका का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि और जो उनकी थोड़ी बहुत बैटिंग में फर्क है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग और श्रीलंका की बैटिंग में ही फर्क रह जाएगा। और वो श्रीलंका ही एकमात्र ऐसी टीम लगती है भारत के बाद इस एशिया कप में जो कि जहां पे अब उनके जो कप्तान है बहुत डेंजरस प्लेयर है, अगर वो खड़े हो जाते हैं तो T20 में अकेला ही मैच अकेले ही मैच खत्म कर सकते हैं। 70-80-90 रन बनाने की दायरा रखते हैं वो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको जो कप्तान अट्टापट्टू है उनका सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा।
0: राइट, थोड़ा सा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। हमें पता है पाकिस्तान है इंडिया के जब मुकाबले होते हैं तो एक राइवलरी ऑन फील्ड कही जाती है, लेकिन पर से वो राइवलरी अब उतनी दिखती नहीं है। खासतौर से अगर हम पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस की भी बात करें तो थाईलैंड के अगेंस्ट 119 में थाईलैंड ने पाकिस्तान को समेट दिया था या रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। भारत के खिलाफ वाले मुकाबले को तो हम भूल नहीं सकते, मेयर 55 रन रहे। सो पाकिस्तान का जो कहते हैं ना एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होगा इस सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर आते हुए, मनोस्थिति भी उसके साथ साथ, आपको लगता है कि दे विल बी एबल टू प्ले फॉर देयर प्राइड एंड पुट अप अ गुड फाइट टुमारो?
1: वही मैं आपसे कह रही थी कि पाकिस्तान का मोरल पूरी तरह से डाउन होगा भारत के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन रहा है। और ये जो राइवलरी की बात करते हैं, मुझे लगता है अब ये बंद कर देनी चाहिए, कोई राइवलरी रह नहीं गई है ना मेंस क्रिकेट में ना विमेन क्रिकेट में। जमीन आसमान का फर्क है प्रदर्शन में, और उसमें एक एक्सपोजर की भी बात है। इंडियन क्रिकेटर्स इतना क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान में अब वो क्वालिटी रह नहीं गई है जो हम बार बार मैदानी प्रतिद्वंदिता की बात करते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ी प्रतिद्वंदिता भारत और ऑस्ट्रेलिया की लगती है। तो वो मोरल डाउन है पाकिस्तान का, परफॉर्म नहीं कर पा रही है टीम, और कल श्रीलंका की चुनौती भी उनके लिए बहुत कड़ी होने वाली है। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत कड़ी टक्कर या कोई उलटफेर की संभावना, लेकिन फिर ये अप्रत्याशित प्रारूप है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आकलन होता है, हमने पहले भी बात की थी कि वो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे होता है, रिकॉर्ड के आधार पर होता है, प्लेयर्स के फॉर्म के आधार पर होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर होता है, और वहाँ मुझे लगता है श्रीलंका काफ़ी आगे है।
0: राइट, सो होपफुली इट्स गोना बी ब्राइट डेज टुमारो फॉर एवरीवन। आई थिंक ब्राइट डेज तो ऑलरेडी हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए हो चुके हैं, बिकॉज भारतीय महिलाओं की टीम इस ऑन गोइंग एशिया कप 2026 के फाइनल्स में एक बार फिर से पहुंच चुकी है। द 10th कंसेक्यूटिव एंट्री फॉर द इंडियन वुमेन आउट देयर इन द एशिया कप ऑफ 2026। आनंद
2: जी, हाँ, 40 रन से आज भारत ने जीत दर्ज की है, और हम सब उम्मीद करेंगे कि जब रविवार को भारतीय टीम फाइनल में उतरेगी तो एक नया इतिहास लिखेगी। प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ने के लिए बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह जी आपका और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।
2: इस कार्यक्रम में हमें टेक्निकल सहयोग दिया लीला सेठी ने, उर्मिला कपिला और नागेंद्र पटेल ने, साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण में सहयोग प्राप्त हुआ वंदना भारद्वाज का, माधवी तिवारी का और स्वाति कपूर का, और इस पूरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: प्लेयर ऑफ द मैच

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். அடுத்த திரை இசை பாடல்கள் 12:10 மணிக்கு கேட்டு ரசிக்கலாம். தொடர்வது ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: Bharat aur France अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपद, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताज़ा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट शेप्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। महाराष्ट्र में नांदेड़ भोकर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सीताखंडी घाट के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक टाटा मैजिक यात्री वाहन को टक्कर मार दी। टाटा मैजिक नांदेड़ से भोकर जा रही थी। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। शैफाली वर्मा ने 40 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला आज रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को फाइनल में भारत से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இதுவரை நினைவில் என்று இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இனிய திரைப்பட பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை, டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous,

भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री का स्वागत किया। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारहखंबा रोड, नीति मार्ग, पंशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और रूस के बीच आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी को तेज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब और निवेश को $50 अरब तक पहुंचाना है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अली खानोफ के साथ इनोप्रोम इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच 4थे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित

0: 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया है। IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी है, जो उम्मीद से बेहतर है। IMF के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजैक ने कहा है कि भारत के बेहतर आर्थिक प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र और निर्यात का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब अर्थव्यवस्था को ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमहुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कांगो के पूर्वी हिस्से के बुकाबू शहर में 2 स्कूलों में भीषण आग लगने से कम 26 छात्रों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of the International Space Summit at Paris in France yesterday.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में कल शनिवार से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसे लेकर राजधानी में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता में इस वर्ष ब्रिक्स का विषय है सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सम्मेलन से अलग कई अन्य द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आज से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारह खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग

0: और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर निर्भर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। नई दिल्ली में कल इंडियन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज में एशियन गेम्स के लिए चुने गए कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी पारुल चौधरी ने 9:22.49 के समय के साथ जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of the International Space Summit at Paris in France yesterday.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of the country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of the global GDP. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and the Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed Ali, will also

0: பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை அம்பத்தூர் ஏஎம் சுதாகர் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். ஜி கே நரசிம்மன் அவர்கள் தவில். சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரசாந்த் குமார். नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन चलने वाले इस शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी है, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में भाग लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने पर लगातार काम कर रहा है। दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के लिए ई संजीवनी जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्र में भारत को WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास